0: थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर वी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
1: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। थोड़ी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे थोड़ी अपनी टोयोटा चूज करन लई जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा, द स्मार्ट चॉइस।

0: ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਪਤਾ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਰੇਡੀਓ ਵੱਜਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ
1: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ Radio Hanji, 1674 AM, 24/7 Indian Radio, Sydney ka apna Indian Radio Station.
2: यार तू इतने इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
3: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजास, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
2: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
3: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: Radio Haji, Sola Socha Hatare.
1: Lao ji, tuhadi nazar hai. Bola.
2: Oye, poli oye di. Zabardast kaamyabi to baad. Geet MP3 te Jagjeet Sandhu Films. Le aaye ne haase, masti te emotion naal parpoor film.
3: Bole ne kasoote basate.
2: ओए बोले ओए टू कॉमेडी ड्रामा ते एंटरटेनमेंट दा पूरा तड़का 12 जून नू पूरी फैमिली दे नाल नजदीकी सिनेमा घरां विच देखना ना भुल्यो ओए बोले ओए टू
4: बोला भाई
2: हुन थोड़े मोटे नाल मोड़ा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नू होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा
5: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज थोड़ी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे थोड़ी अपनी टोयोटा चूज करन ले जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल
2: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लॉन्ग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस
6: Hanji Radio.
7: I want to say, oh, you move this girl. Hey, beautiful. Hey, beautiful. You don't want to say, oh, you move this girl. Hey, beautiful. Hey, beautiful. You don't want to say, oh, you move this.

0: रहा है बोला।
1: ओए बोले ओए दी, जबरदस्त कामयाबी तो बाद गीत MP3 ते जगजीत संधु फिल्म्स ले आए ने हासे मस्ती ते इमोशन नाल भरपूर फिल्म।
2: बोले ने कसूते फसाते
1: ओए बोले ओए 2 कॉमेडी ड्रामा ते एंटरटेनमेंट दा पूरा तड़का 12 जून नू पूरी फैमिली दिनाल नजदीकी सिनेमा घर विच देखना ना भूलियो। ओए बोले ओए 2
3: बोला भाई।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
2: हाय, दिस इज इमरान हाशमी एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन रेडियो हाजी

0: This station is now the ultimate power in the universe.
1: Radio Haji 16748.
2: मेरे शहर दी सब तो चंगी खुशबू

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा।
1: रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: ਸਤਿਕਾਲ ਮੈਂ ਜੀ ਸ਼ੇਰ ਗਿੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ 1674 AM।

0: is now the ultimate power in the universe.
1: Radio Haji 1674.
2: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वल ले लो।
3: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
2: ओ आ किधर? हैरी स्पार्क वल जाना? तुसी आ किथे जा रहे हो?
3: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
2: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
3: आहो जी आहो।
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्स तंच विच वी तुहाडी सेवा विच।

मैं ये फिल्म देखी सी थिएटर च नहीं सी देखी, नेटफ्लिक्स से पई है शायद ये तू या मैं। गुड फिल्म सी, शनाया कपूर ते आदर्श आदर्श गौरव दी गुड एक्टिंग कीती हैगी दोहां ने। डिफरेंट कह सकते हैं बट डिफरेंट होर थोड़ी जी आई डोंट नो ठीक रही। चलो एनीवेज की बुराई करनी हैगी। धमाल दा ट्रेलर भी आ गया ते किनू किमें लग्या दस्यो 0472-6174 साडा नंबर भी दोबारा चल पिया है। खजाने की तलाश हो रही है एक बार फिर तो मल्टी स्टारर फिल्म।

0: बोलना।
1: ओए पुली ओए दी, जबरदस्त कामयाबी तो बाद गीत MP3 ते जगजीत संधू फिल्म्स ले आए ने हासे मस्ती ते इमोशन नाल भरपूर फिल्म।
2: भोले ने कसूते फसाते।
1: ओए भोले ओए टू, कॉमेडी ड्रामा ते एंटरटेनमेंट दा पूरा तड़का 12 जून नू पूरी फैमिली दे नाल नजदीकी सिनेमा घरां विच देखना ना भुल्यो। ओए भोले ओए टू।

0: भारत की सौंधी सौंधी खुशबू लेकर आए हैं। प्रोग्राम खबर बड़ी बेकार है और हमारे प्रोग्राम की अनाउंसमेंट को बेकार करने हम दोनों एक साथ बोलते हैं।
1: लेकिन जो ज्यादा बेकार करता है वो मेरे सामने वाला बंदा करता है
0: और मैं अपने आप को शीशे में देख रहा हूँ
1: और इतनी इतनी खबरें लेके आता है। अभी तो इसने चिकन साल्ट का पता नहीं क्या क्या बना दिया है।
0: देखा भाजी तड़े मुँह आ गया पानी का
1: पाई पाई
0: है। एक तो अंदर लोगों ने मुँह पानी आंदा है। ये रेसिपियां सुन के तड़े मुँह पानी वापस चला गया।
1: मेरे मुँह गारा आ गया।
0: मतलब कि गल की मतलब ये तुसी किवें कह सकदे हो भी लिसनर तुहानू देख रहे ने ते व्यूअर्स तुहानू सुन रहे ने।
1: पाजी लिसनर सानू देख भी सकदे ने
0: मन दियां अखां दे
1: नाल। अच्छा ये दसा कि मैं तुहानू दसदा सानू ना जदों असीं थिएटर वर्कशॉप करदे सी ना
0: तुसी थिएटर कीता
1: यार पाजी मैं थिएटर करके खत्म भी करदा
0: मैं भी कीता थिएटर
1: तुसी भी कीता
0: दस करो दस करो दस करो दस करो
1: रियाज बहुत पक्का है।
0: जो असली स्ट्रीट बनानी सी कहते यार नाम तो दसो कोई ब्लैक टाइम भाजी ना तो सोचे नहीं है वैसे गली तो मेन ही है अच्छा ब्लैक टाउन च नानू है नहीं मैं देखे सड़क फर्स्ट एवन्यू रामलार मार्ग रमेश सड़क है ना हां कांचीपुरम सड़क
1: कांचीपुरम यार कांचीपुरम ओ सी ना
0: धोबियां दी गली मल्ला चोर आला
1: सगरूर चाहिए प्रेम बस्ती
0: प्रेम बस्ती
1: हाँ प्रेम बस्ती है मैं उसे गया भी है
0: प्रेम नगर था बड़े
1: प्रेम नगर
0: मॉडल टाउन
1: मॉडल टाउन
0: मॉडल टाउन नंबर टू
1: पर
0: मॉडल टाउन एक्सटेंशन
1: भाजी मॉडल टाउन वाला भी बंदा ऑस्ट्रेलिया का ही होना कुछ लब्भा नहीं की है मॉडल
0: मॉडल टाउन
1: चलो मॉडल टाउन बुला दो वो भी ऑस्ट्रेलिया का ही होना जिन्हें मॉडल टाउन रखता
0: सब तो बखरा अपने मोहल्ले का ना दसो असि ये टॉपिक भी करा गे किसी दिन बी सब तो जगो तेरवा ना तुसी केड़ा सुनिया मोहल्लिया असि असि जेड़े मोहल्ले च रहने मतलब असि तो नहीं उत्थे रहिंदे हैगे साडा तो मोहल्ला ठीक है पर साडे मोहल्ले दे नाल जेड़ा हैगा वह मोहल्ले का नाम है खटीका मोहल्ला
1: अच्छा तुसी तो रह भी नहीं है मैं रहा वा धक्का कलोनी च दशमेश एवन्यू है उत्थे बनता पिया ही पर अहीं पहला फिर धक्का कलोनी आए ओहदा ला ही धक्का कलोनी सी यार धक्का कलोनी नहीं तो तेरा धक्का चाहिए
0: साडा चलदा है धक्का असीं तां करदे
1: आए हाय हाय हाय अच्छा ओ विचे मेरी जिहड़ी दूजी गल रह गई सी
0: हां जी
1: ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਨਾ ਭਾਜੀ ਮੈਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਸਪਾਈਡਰਮੈਨ ਬਣਿਆ ਸੀ
0: ਅੱਛਾ
1: ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇ
0: ਸਪਾਈਡਰਮੈਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੱਲ
1: ਨਹੀਂ
0: मैं हथा चो जाले छड़दा अपने सीवी दे उत्ते भी लिखना खासियत की शुरू करके जाले छड़ दे
1: म्यूजिक ला के एकदम एंट्री करता बच्चा मेन गेट थड़ी
0: ਦਿਲ ਪੇ ਜ਼ਖਮ ਖਾਏ ਉਧਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸਪਾਈਡਰਮੈਨ
1: ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣਾ ਨੀ ਉਹਦਾ ਡਬਾ ਡਬਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਜੋ ਪਈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਨੀ ਆਉਂਦਾ ਡਬਾ ਡਬਾ ਸਾ ਮਤਲਬ ਡਬਾ ਸਾ ਇੱਕਦਮ ਮੈਨੂੰ ਜੁਕਾਮ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਡਬਾ ਉਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪਰ ਭਾਜੀ ਉਹ
0: ਸਰਗਮ ਸਰਗਮ
1: ਸਪਾਈਡਰਮੈਨ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਐਂਟਰੀ ਸੋਚੀ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਭੰਗੜਾ ਕੋਈ ਕਰਾਏਗਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਇੱਧਰ ਆਓ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫੈਂਸਿੰਗ ਟੱਪ ਕੇ ਆਉਣਾ
0: ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ
1: ਉਹ ਫੈਂਸਿੰਗ ਵੀ ਏਦਾਂ
0: ਦੀ
1: ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਰਾਓ ਲੱਗੇ ਹੋ
0: ਮੈਂ ਕਿਹਾ
1: ਭਾਜੀ ਸੋਚੋ ਮੈਂ ਗੋਰਾ ਸਪਾਈਡਰਮੈਨ

0: जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन से मिलेंगे।
1: आहो जी आहो।
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
2: दिस स्टेशन इज नाउ द अल्टीमेट पावर इन द यूनिवर्स।
3: रेडियो हांजी 16748।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्स टन विच वी तुहाडी सेवा विच।
2: हां जी हां जी, ओए हां जी हां जी,
3: हां जी रेडियो।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्स टन विच वी तुहाडी सेवा विच।

0: मेरा नाम है रतन नूरा और काम करता हूँ खत्म पूरा वे लव यू ऑल भावनाओं को समझो।
1: दोस्तों मैं हूँ सुनील पाल और आप लोग सुन रहे हैं मुझे रेडियो हांजी पर, रेडियो हांजी 1674 AM। अब आपका AM सिर्फ रेडियो हांजी सुनना होना चाहिए। हांजी हांजी कभी ना कहना ना जी ना जी।

0: जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: और जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर स्टंच,
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
3: हेलो, मैं हूँ सनी देओल और आप सुन रहे हैं हांजी 1674 AM।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਔਰ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂ ਜੀ 1600।

this is Ali Asghar here on Radio Haji 1674 AM. सुनते रहिए, सुनाते रहिए, बजाते रहिए, जो करना है करिए.

0: रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।
1: लाओ जी तुहाडी नजर है पोला।
2: ओए पोले ओए दी जबरदस्त कामयाबी तो बाद गीत MP3 ते जगजीत संधू फिल्म्स ले आए ने हासे मस्ती ते इमोशन नाल भरपूर फिल्म।
3: पोले ने कसूते फसाते
2: ओए भोले ओए 2 कॉमेडी ड्रामा ते एंटरटेनमेंट दा पूरा तड़का 12 जून नु पूरी फैमिली दे नाल नजदीकी सिनेमा घरां विच देखना ना भुल्यो। ओए भोले ओए 2

0: ओए सिडनी वालियो, तुसी सुन रहे हो अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी 1674 AM। रेडियो
1: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
2: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
1: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
2: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन
1: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन से मिलनगे।
2: आहो जी आहो।
1: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
3: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
4: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू PR दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, AAT अपील्स, स्किल्ड वीजा, PR, US विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
3: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
4: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर वी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
1: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई जो ने एक दहाके तों वेयर बी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा, द स्मार्ट choice.

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा।
1: हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी
2: रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर वी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
1: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई जो ने एक दहाके तों वेयर बी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
2: हेलो सत श्री अकाल जी, मैं आपकी प्यारी सी लल्ली और आप

0: हाय दिस इज उमंग कुमार और प्यार से लोग मुझे ओके कहते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM। कीप लिसनिंग।
1: हे मैन सजबीर औजला गीत MP3।
2: सारा शहर हमें लॉइन के नाम से जानता है। मोना डार्लिंग

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हांजी हांजी हांजी हांजी
1: हांजी हांजी रेडियो हांजी रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: Hi, this is Imran Hashmi and you're listening to me on Radio Haji.

तेनू ओदे नाल मिलाउन आया सी, मैं ते बस अपनी दोस्ती निभाउन आया सी, मैं ते बस अपनी दोस्ती निभाउन आया सी।

0: रास्ता।
1: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
2: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
3: हाँ जी, मैं हूँ इकरा और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो, हाँ जी 1.67 हो रही है बेबी।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: This station is now the ultimate power in the universe.
3: Radio Haji 16748.

0: थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर वी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
1: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। थोड़ी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे थोड़ी अपनी टोयोटा चूज करन लई जो ने एक दहाके तो वेरबी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
2: ਫੁਲਕਾਰੀ ਉੱਤੇ ਵੇਲ ਬੂਟੀਆਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਚਾਦਰੇ ਤੇ ਪਾ ਦੇ ਮੋਰੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਰੇਡੀਓ।

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साला तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हाय, मैं हूं कपिल शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो हां जी 1674 AM। और ये जिनको जिन्होंने रेडियो ये खोला है वो मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे अच्छे गाने चलाएंगे। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ये जो भी चलाएंगे बहुत अच्छा चलाएंगे और आपको बहुत मजा आएगा। सुनते रहिए रेडियो हां जी 1674 AM। थैंक यू।

0: सुख अमृत पब नाम भगजना कैमन विश्राम अठ इक्की श्लोक
1: जी जंत के ठाकुरा आपे वर्तन हार नानक एको पसरिया दूजा कह दृष्टार सतनाम श्री वाहेगुरु अष्टपदी
0: आप कथे आप सुनने हार आपे एक आप विस्तार
1: जंत स्पावे ता सृष्टो पाए अपने पाणे ले समाए
0: तुम ते पिने किछ होए आपन सूत सब जगत परोए
1: जाको प्रभु जियो आप बुझाए सच नाम सोई जन पाए
0: सो समदर्शी तत् का बेता नानक सगल सिष्ट का जेता
1: जी जंत्र सबता कै हाथ दीन दयाल अनाथ को नाथ
0: जिस राखे तिस कोई न मारे सो मुआ जिस मनो बिसारे
1: तिस्ता जबर कहां को जाए सब सरेक निरंजन राए
0: जी की जुग जाके सुभात अंतर बाहर जानो साथ
1: गुण दान बे अंत पार नानक दास दा बलिहार
0: पूरन पूर रह दयाल सब ऊपर होवत कृपाल
1: अपने कर्तव्य जाने आप अंतर जामी रहो ब्याप
0: तत् पालै जी अनुभव पात जो जो रचियो सुत सहत्यार
1: जिस पावे तिस लय मिलाए भक्त करे हर के गुण गाए
0: मन अंतर विश्वास कर मानिया करन हार नानक इक जानिया
1: जन लागा हर इक नाए तिसकी आसन बिरथी जाए
0: सेवक को सेवा बने आए हुकम बूझ परम पद पाए
1: इसते ऊपर नहीं विचार जाकै मन बसिया निरंकार
0: बंधन तोर पै निर्वैर अंधिन पूजै गुर के पैर
1: एह लोक सुखी पर लोक सुहेले नानक हर प्रभ आपह मेले
0: साध संग मिल करो आनंद गुण गावो परमानंद
1: राम नाम तत् करो हो विचार दुर्लभ देह का करो उदार
0: अमृत वचन हर की गुण गाओ प्रांत नुनकाए हे सुआओ
1: आठ पहर प्रापी खुह नीरा मिटै अज्ञान बिन सहंदीरा
0: सुन उपदेश हृदय बसावो मन इच्छा नानक फल पावो
1: हलत पलत दोइ लेहो सवार राम नाम अंतर उरतार
0: पूरे गुर की पूरी दिखिया जिसमन बसै ते साच परीखिया
1: मन ता नाम जपो लिव लाए दुख दर्द मन ते भौ जाए
0: सच व्यापार करो व्यापारी दरगह निभै खेप तुम्हारी
1: टीका टीक रखो मन माही नानक बहुर न आवै जाहे
0: तिसते दूर कहा को जाए उबरे रखन हार ते आए
1: निरभौ जपै सगल भौ मिटै प्रभु कृपा ते प्राणी छुटै
0: जिस प्रभु राखै तिस नाही दुख नाम जपत मन होवत सुख
1: चिंता जाए मिटै अहंकार तिस जन को कोई न पहुंचन हार
0: सिर उपर ठाडा गुरसूरा नानक ता कह कारज पूरा
1: मत पूरी अमृत जाकी दृष्ट दर्शन पेखत उदरत सृष्ट
0: चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप
1: धन सेवा सेवक परवान अंतर जामी पुरख प्रधान
0: जिस मन बसे सोत निहाल ताकै निकट न आवत काल
1: अमर भय अमरा पद पाया साध संग नानक हर ध्याया
0: सुखमनी सुख अमृत पब नाम भलजना कैमन विश्राम अठ बाई श्लोक
1: ज्ञान अंजन गुरदिया अज्ञान अंधेर विनाश हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन परगास सत नाम श्री वाहेगुरु अष्टपदी
0: संत संग अंतर प्रभ डीठा नाम प्रभु काला का मीठा
1: सगल समिग्री एक स्कट माहे अनक रंग नाना दृष्टा हे
0: नौनद अमृत पब का नाम देही में इसका विश्राम
1: सुन समाध अनहत तै नाद कहन न जाई अचार्य विस्माद
0: इन देखिया जिसे आप दिखाए नानक ते संसो जी पाए
1: सो अंतर सो बाहर अनंत घट घट व्याप रहे आप भगवंत
0: करण माहे आकाश पयाल सर्व लोक पूर्ण प्रतपाल
1: बंतन पर्वत है पार ब्रह्म जैसी आज्ञा तैसा कर्म
0: पौन पानी बैसंतर माहे चार कुंड तै दिसै समाहे
1: तिसते भिन्न नहीं कोठाओ गुर प्रसाद नानक सुख पाओ
0: वेद प्राण सिमरत मैं देख ससियर सूर नखत्र मैं एक
1: वाणी प्रभु की सब को बोलै आप अडूल न कबहू डूलै
0: सर्व करा कर खेलै खेल मोल न पाइय गुणे अमोल
1: सर्व ज्योत मह जाकी ज्योत धार रहे हो स्वामी ओत पोत
0: गुर प्रसाद परम का नाश नानक तिन मैं एहो विसास
1: संत जना का पीखन सा ब्रह्म संत जना कै हृदय सब धर्म
0: संत जना सुने सो बचन सर्व व्यापी राम संग रचन
1: जन जाता तिसकी एह रहत सत बचन साधु सब कहत
0: जो जो होए सो इश्क माने करन करावन हर प्रभ जाने
1: अंतर बसे बाहर पी ओही नानक दर्शन देख सा मोही
0: आप सत किया सब सत तिस प्रभ ते सगली उत्पत
1: तिस पावे ता करे विस्तार तिस पावे ता एकंकार
0: अनकला लखी न जाए जिस पावे तिस लय मिलाए
1: कवन लिप्त कवन कहिए दूर आपे आप आप भरपूर
0: अंतरगा जिसे आप जनाए नानक तिस चन आप बुझाए
1: सर्व भूत अवतारा सर्व नैन आपे खनहारा
0: सगल समग्री जा का तना आपन जस आप ही सुना
1: आवन जाने खेल बनाया आज्ञाकारी कीनी माया
0: सबके मदल पत्तो रह जो कुछ कहना सो आपे कह
1: आग्या आवे आग्या जाए नानक जा पावे ता ले समाए
0: इसते होए सुनाही बुरा उरे कहो किने कुछ करा
1: आप ला कर तू ततनी की आपे जाने अपने जी की
0: आप साज तारी सब साज ओत पोत आपन संग्राह
1: ताकि गत नित कही न जाए दूसर होए ता सो जी पाए
0: इसका किया सब परवान गुर प्रसाद नानक हो जान
1: जो जाने ते सदा सुख होए आप मिलाए ले प्रभु सोए
0: ओ धनवंत कुलवंत पतवंत जीवन मुक्त जिस हृदय भगवान
1: धन धन धन जन आया जिस प्रसाद सब जगत राया
0: जानावन कहे सुआओ जन कह संचित आवे नाओ
1: आप मुक्त मुक्त करे संसार नानक तिस जन को सदा नमस्कार
0: सुखमनी सुख अमृत पब नाम भगत जना ਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਵਿਸਰਾਮ।

0: श्लोक
1: पूरा प्रभ आराध्या पूरा जाका नाओ नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ सत नाम श्री वाहे गुरु अष्टपदी
0: पूरे गुरु का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पे
1: सा सा सिमरो गोबिंद मन अंतर की उतरै चिंद
0: आस नित्या गोतरंग संत जना की दूर मन मंग
1: आप छोड़ बेनती करहो साध संग आगन सागर तरहो
0: हर तन के भर लिहो भंडार नानक गुर पूरे नमस्कार
1: खेम कुशल सहज आनंद साध संग भज परमानंद
0: नरक निवार उधारो जियो गुण गोविंद अमृत रस पियो
1: चित चितवो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक
0: गोपाल दमोदर दीन दयाल दुपंजन पूरन कृपाल
1: सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का यह आधार
0: उत्तम श्लोक साध के बचन अमोलीक लाल एह रतन
1: संत कमावत हो तो उधार आप तरह लोक कह निस्तार
0: सफल जीवन सफलता का संग जाके मन लागा हर रंग
1: जय जय शब्द अनाहद वाजय सुन सुन आनंद करे प्रभु गाजय
0: प्रगटे गोपाल महत के माथे नानक उदरे तिन कह साथे
1: शरण जोग सुन शरणी आए कर कृपा प्रभु आप मिलाए
0: मिट गए बैर पे सबरेन अमृत नाम साध संगलैन
1: सो प्रसन्न पय गुरुदेव पूर्ण हुई सेव की सेव
0: आल जंजाल बिकार ते रहते राम नाम सुरस न कहते
1: कर प्रसाद दया प्रवतारी नानक निभी खेप हमारी
0: तब की उस्तत करो संत मीत सावधान एकागर चीत
1: सुखमनि सहज गोविंद गुण नाम जिस मन बसै सो होत निदान
0: सर्व इच्छा ताकी पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए
1: सब ते ऊच पाए स्थान बहर न होवे आवन जान
0: हर दिन खाट चले जन सोए नानक जिसे प्राप्त होए
1: खेम शांत रिद नव निद बुद्ध ज्ञान सर्व तह सिद्ध
0: विद्या तप जोग पव ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान
1: चार पदार्थ कमल प्रगा सब कै मध सगल ते उदास
0: सुंदर चित तत् का बीता समदर्शी एक दृष्टि
1: ते फल तिस जान कै मुख पाने गुरु नानक नाम बचन मन सुने
0: इहो निधान जपै मन कोए सब जुग मैता की गत होए
1: गुण गोबिंद नाम धुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखाणी
0: सगल मतात केवल हर नाम गोविंद भक्त कै मन विश्राम
1: कोट अपराध साध संग मिटै संत कृपा ते जन ते छुटै
0: जा कै मस्तक क्रम प्रपाए साध शरण नानक ते आए
1: जिस मन बसै सुनै लाए प्री तिस जन आवै हर प्रभु चीत
0: मरणता का दुख निवारै दुलभ दे तत्काल उधारै
1: निर्मल शोभा अमृता की बानी एक नाम मन माहे समानी
0: दुख रोग बिन से वै परम साध नाम निर्मलता के करम
1: सब ते उचता की शोभा बनी नानक एह गुण नाम सुख मनी सब ते उचता की शोभा बनी नानक एह गुण नाम सुखमनी सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम पत जना कै मन विश्राम अठ चौबीस लो

आखण जोर चुपै नह जोर, जोर ना मंगण देण ना जोर, जोर ना जीवन मरण ना जोर, जोर ना राज माल मन सोर।

0: मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होरवी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
1: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
2: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
3: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मैनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
2: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
3: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। इस पूरी अवेकनिंग में, इस पूरे जागरण के प्रक्रिया में हमने ये जाना है कि किस तरह से अगर हम रिश्तों को एक नए रूप में देखने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं जो परेशानी आ रही थी, जो मुश्किलें आती हैं, जो हर बार हम ये कहते हैं कि रिश्ता सही नहीं चल रहा, वो बेहतर बनाया जा सकता है। चाहे वो रिश्ता पति पत्नी का हो, चाहे वो माँ बाप का हो, चाहे वो बच्चे का अपने पिता के साथ हो, या फिर एक स्टूडेंट और टीचर का हो, आज जरूरत है कि हर रिश्ते को हम एक नए अंदाज, एक नए नजरिए और जो हमने जानकारी प्राप्त की है, जो ज्ञान हमें मिला है, उस अवेयरनेस के साथ देखें तो शायद एक नए रूप में नजर आएगा। पति पत्नी के रिश्ते के कई नए प्रारूप हमारे सामने आए हैं। आज थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और उस मुद्दे पर बात करते हैं जो किसी भी रिश्ते की नींव हो सकती है, और वो है विश्वास यानी ट्रस्ट। और इस पर बातचीत करने के लिए हर बार की तरह हमारे साथ है ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति
0: सिस्टर शिवानी। जब से हमने रिश्तों के ऊपर बात करनी शुरू की है, इतने सारे फोन कॉल आ रहे हैं क्योंकि एक नए अंदाज में हम देख पा रहे हैं। इनफैक्ट मेरे लिए भी बहुत आसान हो गया हर रिश्ते को नई नजर से देखना। और आगे बढ़े उससे पहले एक बार यही बात कर लेते हैं कि ना मैं बता रही हूँ ना आप बता रहे हैं, क्योंकि ये बात मुझे एकदम से रियलाइज हुई है कि हम कितना भी सोच लें लेकिन जब हम इस तरह से कार्यक्रम में बैठते हैं तो कुछ और बात ही निकल आती है, एक ऐसी ज्ञान की बात जो हमने सोची भी नहीं होती। तो मैं तो अपने आप को स्वयं मान रही हूँ कि मैं एक माध्यम हूँ, तो ज्ञान कहाँ से आ रहा है एक बार फिर उसके बारे में बात करते हैं।
1: जहाँ तक हर बात, हर पॉइंट जो हम यहाँ डिस्कस करते, तो ये हर बात बहुत गूढ़ रीति से हमें सारी जो एक्सप्लेनेशन दी है वो निराकार परमात्मा शिव, जिसको हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं, जो स्वयं इस समय सृष्टि पर अवतरित होकर हम आत्माओं को अपना परिचय देते और फिर जीवन जीने के लिए जो ज्ञान की आवश्यकता है, जो जीवन में चलते चलते कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज आ जाती हैं, तो उस यात्रा को सिंपल करने के लिए जो इतना डीप नॉलेज हमें मिलता है, लेकिन द ब्यूटी ऑफ इट इज इट्स वेरी डीप बट वेरी सिंपल, और वो सिंपल होने के कारण फिर वो इम्प्लीमेंट करना इजी हो जाता है।
0: ट्रस्ट की बात करते हैं कि विश्वास, जैसा कि हम शिव बाबा पे कर रहे हैं 100% विश्वास रखते हैं, तो उसी तरह से अगर हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में देखें, हमने रिस्पेक्ट की बात की थी, हमने ये बात की थी, अपेक्षाओं की बात की थी, अंडरस्टैंडिंग की बात की थी, वो सारे एस्पेक्ट्स फिर भी इतने मायने नहीं रखते हैं कि कंपैटिबिलिटी भी है या नहीं। सबसे बड़ा जो, क्योंकि वो रिश्ता बन रहा है जहां कोई खून का रिश्ता नहीं है लेकिन फिर भी जन्मों का रिश्ता है, सो वहां विश्वास, हम अपने दोस्त पे विश्वास जरूर कर लेते हैं, यहां विश्वास, इस रिश्ते में विश्वास कितना जरूरी हो जाता है।
1: विश्वास हर रिश्ते में जरूरी है। जरूरी नहीं है कि जो खून का रिश्ता है उसमें विश्वास करना इजी होगा और जो इस तरह से यात्रा के दौरान जुड़ा हुआ रिश्ता है उसमें डिफिकल्ट है। नहीं, आजकल पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में भी विश्वास की कमी है, तो वो तो सबसे ब्यूटीफुल एंड क्लोजेस्ट रिलेशनशिप है, ब्लड रिलेशनशिप है, तो उसमें क्यों कमी है। तो ट्रस्ट इज नॉट समथिंग विच नीड्स टू बी यू नो रिलेटेड टू बी अ ब्लड कनेक्शन, इट हैज टू बी अ सोल टू अ सोल रिलेशनशिप। तो विश्वास तो रिश्ते के अलावा भी एक्चुअली हर आत्मा को, हर आत्मा पर करना चाहिए, लेकिन उसके लिए इम्पोर्टेंट है पहले कि मैं औरों पर विश्वास करना आज क्यों मुश्किल लग रहा है, क्योंकि मैं शायद आज खुद पर विश्वास नहीं कर पा रही।
0: नहीं, मैंने ब्लड रिलेशन की भी बात इसलिए की थी कि हम ये कहते हैं कि चलो उनको तो हम माफ कर सकते हैं, वो है तो हमारा खून ही, हमारा अपना ही है, कोई बात नहीं कर रहे,
1: तो उनको हम माफ इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हम उनको माफ करना चाहते हैं, बाकी माफ तो हम किसी को भी कर सकते हैं। फॉरगिव, वी कैन फॉरगिव एनीबॉडी, व्हाई, बिकॉज आई नो हाउ टू फॉरगिव, लेकिन हम चूज करते हैं किसको फॉरगिव करना किसको नहीं करना। अगर हमें फॉरगिव करने की कला आती है तो अगर हम एक को कर सकते हैं तो किसी को भी कर सकते हैं, लेकिन वो ट्रस्ट क्या है, उसको कैसे डेवलप करना, वो मुझे पहले अपने आप के साथ एक्सपीरियंस करना पड़ता है। वर्तमान समय औरों पे ट्रस्ट करना क्यों मुश्किल है, क्योंकि ट्रस्ट अर्थात फेथ, एक इंटेग्रिटी जो मुझे आप पर या किसी और आत्मा पर करनी है, लेकिन आज जनरली हम डाउट करते हैं, यू नो इवन इन अ हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप वो ट्रस्ट बहुत जल्दी हिल जाता है। शिव बाबा हमें बताते हैं कि संशय और निश्चय यू नो डाउट या ट्रस्ट, इसमें कोई परसेंटेज नहीं हो सकती है। हम जो एफर्ट करते हैं उसमें परसेंटेज होती है, लेकिन आप किसी पे ट्रस्ट करते हैं इसमें परसेंटेज नहीं होती। हम ये नहीं कह सकते कि थोड़ा सा ट्रस्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे मेरा ट्रस्ट
2: बढ़ता जाएगा।
1: तो शिव बाबा कहते या तो निश्चय है या निश्चय नहीं है।
0: लेकिन मैं अपने लिए ये ऑप्शन रखता हूँ कि अगर मुझे धोखा मिला तो मैं इतना हर्ट या हर्ट नहीं हो जाऊंगी कि मैं अपनी जिंदगी ही
1: ये थॉट पहले से क्रिएट करना कि अगर मुझे धोखा मिला मतलब आई डू नॉट ट्रस्ट, मतलब आई एम ऑलरेडी डाउटिंग, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बेनिफिट ऑफ डाउट सामने वाले व्यक्ति को दे दिया कि इनके अंदर ये कैपेसिटी है कि ये धोखा देंगे। तो फिर वेयर इज द ट्रस्ट? परमात्मा यही बताते हैं कि अगर एक भी थॉट डाउट की आए, एक थॉट, ज्यादा नहीं, एक थॉट भी डाउट की आए तो अभी आप डाउट वाली साइड पर है, ट्रस्ट वाली साइड पर नहीं है, अभी संशय है उस रिलेशनशिप में। निश्चय जिस रिलेशनशिप में होगा जहां एक भी थॉट, वर्ड, एक्शन तो आउट ऑफ द क्वेश्चन, एक भी थॉट डाउट की नहीं होगी, दैट इज ट्रस्ट। एंड फिर वो इसीलिए परसेंटेज में नहीं हो सकता। जिस दिन तक डाउट्स है माइंड में तब तक हम डाउट वाली स्टेज पे है कि मैं इनको डाउट करती हूँ, लेकिन जिस दिन मन से सारे डाउट्स हट गए, एक थॉट भी डाउट करने आया, उस दिन कह दीजिएगा कि नाउ आई ट्रस्ट दिस पर्सन।
0: लेकिन ट्रस्ट हैज टू बी अर्नड। कहा जाता है कि आपको अर्न करनी पड़ेगी, मेरा विश्वास आपको जीतना पड़ेगा। विश्वास जीतिए आप।
1: ट्रस्ट मुझे करना है तो उसके लिए सामने वाले को कुछ नहीं करना है। आप जो हैं, जैसे हैं, वैसे हैं। अब आपको ट्रस्ट करना या नहीं करना ये चॉइस मेरी है। आपको अपने आप को प्रूफ करके नहीं दिखाना होगा उसके लिए, क्योंकि वो में भी समय लगता है कि हम आपको जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक्चुअली कहा जाता है कि ट्रस्ट तो फाउंडेशन है, सो दैट मींस वी आर ट्राइंग टू से कि हम एक बिल्डिंग को बनाते हैं और बनाते बनाते धीरे धीरे जब हम एक दूसरे को जान लेंगे तब ट्रस्ट वाला फ्लोर बीच में डाल देंगे। बट वी सेड इट्स द फाउंडेशन, सो दैट मींस इट विल हैव टू बी द फर्स्ट थिंग। इट कांट बी समथिंग दैट इज डेवलप्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज लेट्स से इन अ हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, सो टुडे यू आर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। अब आप क्या कहना चाहते हैं कि एक दो तीन साल के अंदर अंदर धीरे धीरे ट्रस्ट डेवलप करें? हाउ डू आई गो अबाउट इट? और शुड आई से वी बिगिन इट विद ट्रस्ट? बिकॉज तब तो आपकी स्ट्रांग फाउंडेशन होगी, नहीं तो फाउंडेशन डाउट की है। डाउट की फाउंडेशन पे तो वही इमारत वैसे भी बहुत ज्यादा नहीं खड़ी रहेगी, क्योंकि डाउट की फाउंडेशन पर खड़ी हुई जो अगले एक दो तीन साल भी बीते उसमें थॉट्स ऑफ ये ऐसा तो नहीं कर रहे, ऐसा तो नहीं कर रहे, करेंगे या नहीं करेंगे, कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं। ट्रस्ट इज ऑन अ लॉट ऑफ लेवल्स।
0: ट्रस्ट का मायने क्या है कि मैं आपको पोजेस कर लूंगी कि आप मेरे ही हैं? अगेन ट्रस्ट इज समथिंग हैज टू बी यू नो एक्चुअली डिटेल में अंडरस्टैंड करने वाली बात है कि मैं आप पे कंप्लीट विश्वास करती हूँ, क्या मैं आप पे एहसान कर रही हूँ? वन सेकेंड उसका पूरा मतलब क्या है कि मैं आप पे कंप्लीट ट्रस्ट करती हूँ?
1: दूसरे पर ट्रस्ट करके हम दूसरे पर एहसान नहीं करते, हम अपने ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं, क्योंकि जितना समय हम डाउट में रहते हैं अंदर डिस्टर्बेंस
0: पेन रहती है, बहुत पेन है,
1: एक इनस्टेबिलिटी कंटिन्यूस, मतलब अ लॉट ऑफ वेस्ट एंड नेगेटिव थॉट्स। और जिस क्षण ट्रस्ट करना शुरू किया ऑल वेस्ट एंड नेगेटिव थॉट्स ओवर, तो वो एहसान दूसरे पर किया या अपने ऊपर किया? अपने ऊपर किया कि सारे जिसको कहें चिंता, बोझ, एंग्जाइटी, इट्स ऑल ओवर, बिकॉज नाउ देयर इज नो डाउट। वी कैन डाउट ऑन अ लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स, कितनी चीजें हैं जिसमें हम डाउट करते हैं, और जब वो सारा हट जाता है तो सोचो अंदर क्या होगा। दैट इज पीस, दैट इज हैप्पीनेस, जहां अंदर एकदम स्थिरता आ जाएगी। तो ये किस पर एहसान किया? अपने पर एहसान किया। दूसरे ने कुछ भी नहीं किया उसके लिए, लेकिन जिस क्षण हमें लगा कि अब हम कर सकते हैं हमने करना शुरू कर दिया। आज हम क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि जब कोई हमारे सामने कुछ कहता है या कुछ करता है तो हमारे मन में ये डाउट होता है कि क्या ये सोचते भी यही है। वाई?
0: हाँ अगेन यू नो, क्योंकि कहते वो कुछ रहे हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन अंदर हमें नहीं मालूम कि, क्योंकि लगता ये है कि डिफरेंस होगा जो सोच रहे हैं और कहने में।
1: क्यों ऐसा लगता कि दूसरे के अंदर
0: होगा? खुद ऐसे होगा
1: क्योंकि हमारे अंदर ऐसा है। सो सी रिलेशनशिप इज माई कॉन्शियसनेस मैं आपकी इमेज। अब मेरी कॉन्शियसनेस की जो क्वालिटी होगी उसमें ही तो आपकी पिक्चर आकर बनेगी ना। मतलब मेरे पास कलर्स की क्वालिटी क्या है, दैट इज माय कॉन्शियसनेस। अब उन कलर्स से मैं आपकी पिक्चर बनाऊंगी, तो जो क्वालिटी ऑफ कलर्स होंगे वो उस पिक्चर के अंदर हाईलाइट हो जाएंगे बिल्कुल। अगर मेरी कॉन्शियसनेस में ये इंटेग्रिटी नहीं है, मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स इफ माई थॉट्स वर्ड्स एक्शंस आर सेपरेट, तो मुझे क्या लगेगा कि बाकी लोग भी कैसे है? ऑटोमेटिकली मैं कैसे इसको बिलीव करूं, क्योंकि मेरे पास वो कलर्स ही नहीं। तो जो कलर मेरे पास है ही नहीं, तो मैं दूसरे को उस कलर में देख नहीं सकती हूँ। मेरे पास वही कलर है क्योंकि मेरी कॉन्शियसनेस के अंदर सारा दिन में कई बार ऐसा हो रहा है कि मैं सोच कुछ और रही हूँ, बोल कुछ और रही हूँ, कर कुछ और रही हूँ। तो मेरे पास वही रंग है। अब वही रंग से मैं आपकी इमेज अपने कॉन्शियसनेस में बनाऊंगी, तो आपकी इमेज भी यही बनेगी कि आप भी सोचते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं। अगर आप कहते भी हैं कि नहीं मैं जो सोच रही हूँ वो ही बोल रही हूँ, आई डोंट हैव द कलर, आई डोंट हैव द कलर,
0: आई कांट रिलेट टू इट,
1: आई कांट रिलेट टू इट, आई डोंट हैव द कलर। इट्स लाइक सेइंग कि आई हैव रेड कलर, तो मैं आपकी पिक्चर रेड कलर से ही बनाऊ। आप बोलो नहीं आई एम ब्लू कलर, आई डोंट हैव ब्लू कलर,
0: आई डोंट इवन नो व्हाट काइंड ऑफ अ ब्लू कलर। गुड,
1: आई विल स्टिल पेंट योर पिक्चर विद रेड कलर एंड आई विल स्टिल होल्ड ऑन टू द थॉट, नहीं आप सोच कुछ और रहे, बोल कुछ और रहे। तो इट इज इंटेग्रिटी एट द वेरी रूट लेवल। और ये कोई बहुत ज्यादा बड़ी बातों में नहीं, लेकिन सारा दिन में छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी बातों में। अब जब हम वो ट्रस्ट का कलर अपनी कॉन्शियसनेस में क्रिएट कर देंगे, और वो कैसे होगा, जब मेडिटेशन से हमारे अंदर इतनी शक्ति आ जाती है कि हम जो सोचते हैं वो ही बोलते हैं। अभी तक हम जो सोचते हैं वो नहीं बोलते, कहीं ना कहीं डर, कहीं ना कहीं लोगों को खुश करना, कहीं ना कहीं किसी को इम्प्रेस करना, तो प्रिटेंशन क्यों थी अभी तक, क्योंकि हमने सोचा कि मैं कौन हूँ। मैं एक शरीर हूँ, पोजीशन हूँ, स्टेटस हूँ, एक पर्सनालिटी जो मैंने क्रिएट की है, तो एक आउटर पर्सनालिटी है, और उस आउटर पर्सनालिटी को मुझे सारा दिन दूसरों को क्रिएट करके दिखाना पड़ता है। एंड अगेन इट वॉज वेरी इम्पोर्टेंट कि मुझे बार बार ये डिसइंटेग्रिटी से चलना पड़ता था, क्योंकि मेरी सेल्फ एस्टीम उस पर बेस्ड थी कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। तो लेट्स से मैं इस टाइम बहुत उदास हूँ, बहुत परेशान हूँ, लेकिन अगर मैंने आपको बता दिया कि मैं बहुत उदास हूँ, तो आप सोचेंगे अरे आप भी उदास होते हैं, तो और आपका मेरे बारे में ऐसा सोचना मेरी सेल्फ एस्टीम को क्रैश कर देगा। अगर मेरी सेल्फ एस्टीम इस चीज पर बेस्ड है कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, एंड नॉर्मली आज दिन तक हमारी सेल्फ एस्टीम औरों के ओपिनियन पर बहुत ज्यादा बेस्ड थी, तो इसलिए कहीं ना कहीं हमें अपनी थॉट्स और फीलिंग्स को छुपा के रखना पड़ता था, और हमें वही चीजें बोलनी पड़ती थी जो औरों को अच्छी लगती है, क्योंकि हमें उन्हें खुश करना है। तो आई एम चीटिंग माई सेल्फ, तो एक्चुअली इफ यू सी सारा दिन में मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम चीटिंग माई सेल्फ बिकॉज आई डोंट हैव द करेज टू स्पीक वट आई एम थिंकिंग। वाई? बिकॉज यू माइट नॉट लाइक इट, एंड इफ यू डोंट लाइक इट देन यू डोंट लाइक मी, एंड इफ यू डोंट लाइक मी देन आई डोंट लाइक माई सेल्फ।
0: That's important.
1: So it's very deep. तो सारा दिन में आई एम गोइंग अराउंड इम्प्रेसिंग पीपल, इन्फ्लुएंसिंग पीपल, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई जस्ट कांट बी माई सेल्फ, आई कांट बी वट आई वॉन्ट टू बी। स्पिरिचुअलिटी ने हमें अपना सही परिचय दिया कि मैं कौन हूँ, मैं वो आत्मा हूँ जिसके अंदर इतनी ब्यूटीफुल गुण है, शक्तियां हैं। वर्तमान समय कुछ एक कमजोरियां भी है, बट दैट्स ओके, आई एम वर्किंग ऑन दैट। आई डू नॉट वॉन्ट टू क्लेम टू से दैट आई एम परफेक्ट,
0: बट आई कैन ट्रांसफॉर्म ना, दैट्स व्हाट आई एम वर्किंग ऑन।
1: आई एम वर्किंग ऑन दैट, बट टू वर्क ऑन दैट आई हैव टू एक्सेप्ट दैट, आई हैव टू एक्सेप्ट कि मेरे अंदर ये कमियां हैं। लेकिन आज दिन तक आई वॉन्टेड टू हाइड
0: फ्रॉम माई सेल्फ, यू नो,
1: कि वो सारी कमियों को छुपा के एक इमेज क्रिएट करना चाहते थे कि आई एम जस्ट फाइन द वे आई एम, तो देन आई कुडंट बी माई सेल्फ, आई कुडंट बी माई सेल्फ। तो बिकॉज ऑफ दैट आई हैड टू कीप ऑन चीटिंग माई सेल्फ, तो मेरा अपने पे ट्रस्ट, और जैसी मैं हूँ वैसे ही सब लोग हैं, वो मुझे 100%।
0: वो भी कई बार आप भूल जाते, इनफैक्ट बहुत ज्यादा वक्त आप खुद तो सोल कॉन्शियसनेस में रह सकते हैं, हर बार आप अपने आप को याद दिला देते हैं, लेकिन जैसे ही लोगों के बीच हो जाते हैं ये तो भूल जाते हैं। आपको वही, मुझे आप ही दिखेंगी जो जिस रूप में आप हैं, आई विल फॉरगेट, ये अभी भी इस पे काम करना बाकी है।
1: या दैट्स ओके, बट यू डू सी, जब हम अपने अंदर ये काम करना शुरू कर देते हैं कि आई स्टार्ट एक्सेप्टिंग माई सेल्फ, कि मेरे अंदर ये गुण हैं, विशेषताएं हैं, लेकिन ये कमजोरियां भी हैं, बट दैट्स फाइन, यू नो, सो दैट इज एक्सेप्टेंस, कि इट्स ओके, ये कमजोरियां हैं एंड आई एम वर्किंग ऑन इट, इंटेग्रिटी। जब मेरे अंदर ये इंटेग्रिटी आ जाएगी, देन आई कैन एक्सेप्ट अदर पीपल ऑल्सो इन द सेम वे, कि इनके अंदर भी ये गुण है लेकिन ये थोड़ी कमजोरियां हैं, बट आई एक्सेप्ट देम विद बोथ द थिंग्स। तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे आपको मेरे सामने आने के बाद प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आई एक्सेप्ट यू। हम प्रिटेंड किसके सामने करेंगे, जो हमें वो कमजोरियों के साथ एक्सेप्ट नहीं करते।
0: तो इनफैक्ट हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में होता यही है, बिगिनिंग में तो देर इज अ प्रिटेंशन, लॉट ऑफ प्रिटेंशन, बट ग्रेजुअली, बिकॉज कब तक, क्योंकि आप 24 घंटे का साथ रहेगा।
1: अब उस रिश्ते में क्यों प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सारा दिन प्रिटेंड करना
0: बहुत मुश्किल हो जाता है।
1: आप ऑफिस थोड़ी देर प्रिटेंड कर सकते हैं, क्योंकि कभी आप किसी कोलीग के साथ हैं, कभी लेकिन जिसके साथ पूरी जीवन बितानी है, उसके सामने प्रिटेंड करना बहुत मुश्किल होता, और तब जब कहीं वो प्रिटेंस गिर जाता, तो इट्स लाइक अ डिफरेंट पर्सन,
0: एंड देन द कंप्लेंट कम्स, इज लाइक आपका असली चेहरा अब दिखा। ये
1: एंड स्पेशली इन दिस काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप, जब आपने कहा ना कि जो पहले से जानते थे एक दूसरे को, और फिर उस संबंध में जुड़े, लेकिन वो जो पहले जानने वाला पीरियड था
0: वो डिफरेंट था ना, वो प्रिटेंशन वाला था, कि आप 2 घंटे मिल रहे हैं, 4 घंटे मिल रहे हैं, यू आर योर बेस्ट, that I have, that is actually, yes, that's understandable.
1: लेकिन जब आप अपने आप को एक्सेप्ट कर लेंगे, एंड जब आप ये एनर्जी दूसरे को ट्रांसमिट कर सकते हैं कि आई एक्सेप्ट यू विद ऑल योर वीकनेसेस, तब दूसरे को आपके सामने प्रिटेंड नहीं करना पड़ेगा, एंड तब वो जो सोच रहे हैं वो बोलेंगे। तो औरों को हमें प्रूफ नहीं करना, लाइक यू सेड ना, यू विल हैव टू विन माई ट्रस्ट, नहीं, आई हैव टू बिकम स्ट्रांग इनफ
0: टू ट्रस्ट यू। ट्रस्ट का रियल सेंस में मीनिंग क्या है, मैं आप पे क्या कैसे ट्रस्ट कर रही हूँ, मैं क्या आपसे उम्मीद कर रही हूँ, या क्या मैं आपकी, क्या विश्वास का बेसिक मतलब
1: क्या? जब हमने एक्सेप्ट कर लिया तो फिर एक्सपेक्टेशन नहीं आ सकती है। एक्सेप्ट और एक्सपेक्टेशन क्या मतलब हुआ, देन दैट मीन्स देयर इज अगेन एन एक्सपेक्टेशन,
0: यू चेंज, यू डू दिस फॉर मी, यू डू दैट फॉर मी,
1: तो आप हर टाइम कहीं ना कहीं चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, और जहां सामने वाला व्यक्ति चेंज नहीं होगा हमारी एक्सपेक्टेशन के अनुसार, तो ट्रस्ट मतलब मैंने एक इमेज बना ली कि आपको ऐसा होना है, जितने दिन तक आप इस इमेज के अनुसार चल रहे हैं, आई से आई ट्रस्ट यू, जिस दिन वो इमेज के कॉन्ट्रडिक्टरी आपने कोई कर्म कर दिया या कोई बोल दिया, तो हम कहेंगे मेरा विश्वास टूट गया। क्यों विश्वास टूट गया, क्योंकि वो इमेज टूट गई। तो विश्वास क्या है, कि आई ट्रस्ट यू, बेसिकली फॉर मी इट वुड बी, विश्वास वो है कि आई ट्रस्ट दैट यू आर फीलिंग द सेम थिंग वॉट यू आर सेइंग, दैट्स द डीपेस्ट, क्योंकि अगर आप उस लेवल पर उसको ले आएंगे तो बाकी सारी चीजें तो सारी आराम से उस पैरामीटर के अंदर फिट हो जाएंगे, लेकिन डीपेस्ट ये है कि छोटी से छोटी बात में आप वो ही कह रहे हैं
0: जो आप सोच रहे हैं,
1: जो आप सोच रहे हैं, जो आप महसूस कर रहे हैं, आपको मेरे सामने झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। विश्वास तभी टूटेगा ना।
0: हाँ, यहाँ मैं ये जानना चाहती हूँ कि ठीक है, मैंने आपको जैसे है, आप जिस भी रूप में आप, वैसे स्वीकार लिया, और ये मैं ये मेरा विश्वास है कि आप जो कह रहे हैं वो सच ही कह रहे हैं। आप एक तरह के थे जब मैं आपके साथ मिली, आपके साथ एक रिश्ता शुरू हुआ, आप सच में विश्वास रखते थे, सच में, एक जनरल बात में कर रही हूँ। जिंदगी चलती गई, आपको देखा मैंने, धीरे धीरे मैंने देखा कि वो सच पे जो आपकी अधिकता, जिसको मैं बहुत प्रशंसा करती थी, आपको एक्सेप्ट कर रही थी या कर रहा था, आप बदल गए, जिंदगी ने बदला या जो भी हुआ, मैंने देखा कि आप
1: झूठ बोलना शुरू कर दिया,
0: आपने झूठ बोलना शुरू कर दिया, तब भी मैं आपको एक्सेप्ट करती, बुरा लगा मुझे, क्योंकि मैं उस आपकी जो वो गुण था उसको बहुत प्रशंसा करती थी, लेकिन तब भी मुझे एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हुआ, और यहाँ मुझे लगा कि मेरी ट्रस्ट ब्रेक हो गई।
1: नाउ आई वुड थिंक इन दिस, कि आपको मेरे सामने झूठ बोलने की जरूरत पड़ रही है, ये आपकी गलती है या मेरी गलती है?
0: मेरे सामने नहीं बोल रहे हो, कहीं और बाकी व्यवहार में
1: नहीं, पहले यहाँ, सी द होल एंटायर रिलेशनशिप इज फर्स्ट द एनर्जी एक्सचेंज हियर बिटवीन टू पीपल, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम तब होगी ज्यादा जब आप मेरे सामने झूठ बोल रहे हैं। अगर आप कहीं और बोल रहे हैं तो आई वुड प्रोबेबली अंडरस्टैंड कि आप वो क्यों बोल रहे हैं, एंड आई विल बी अ पार्ट ऑफ इट विद यू, लेकिन मेरे सामने जब आप बोलते हैं, क्योंकि वी आर टॉकिंग ऑफ योर एंड माई ट्रस्ट, यू नो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट योर ट्रस्ट विद द अदर पीपल, लेकिन हम कहते हैं मैंने आप पर पूरा विश्वास किया, मैंने हर चीज पर पूरा विश्वास किया, आपने झूठ बोला तो मेरा ट्रस्ट टूट गया। हम ये नहीं उस पर विचार करते कि सामने वाले को मेरे सामने झूठ बोलना क्यों पड़ा।
0: जब मैं कुछ ऐसा कर चुकी हूँ या किया जो आपको पसंद नहीं आया,
1: अगेन जब आपने कुछ ऐसा किया जो आपको पता है कि अगर आपने सच बताया तो आई विल नॉट एक्सेप्ट इट एंड आई विल नॉट लाइक इट और वट एवर, तो तब आपको झूठ बोलना पड़ा। तो ये प्रॉब्लम किसकी थी? माई लैक ऑफ एक्सेप्टेंस, मेरे अंदर एक्सेप्ट करने की ताकत नहीं थी। इस ताकत की कमी होने के कारण आपको मेरे सामने झूठ बोलना पड़ा।
0: लेकिन
1: अब हम ये कह सकते हैं लेकिन आपने गलत किया, आपने झूठ बोला, बट वी आर नॉट हियर टू लुक एट एवरीबडी एल्सेस फॉल्ट्स। यस, अ लॉट ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड मेकिंग लॉट ऑफ मिस्टेक्स, बट वी कांट चेंज देम। वी आर इन एवरी इंटरेक्शन वी आर गोइंग टू सी मैंने क्या किया इसमें, बिकॉज मैं उनको नहीं चेंज कर सकती कि वो सच बोले, लेकिन मैं अपने आप को इतना स्ट्रांग बना दूं कि सामने वाले को मेरे सामने झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़े।
0: लेकिन रिश्तों में यही एक कहीं ये जो माइंडसेट चेंज होने की बात है, क्योंकि ज्यादातर ये देखा गया है कि वक्त के साथ साथ लोग बदलते हैं। हर रिश्ते में वो नहीं दिखता, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता, तो जहां से मैं आपको एक्सेप्ट कर रही हूं, ऐसे एक सिचुएशन में आपने एक तरह से बिहेव किया, मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया, वही सिचुएशन अगर 4 साल बाद आई, आपने अलग तरह से बिहेव किया, अलग तरह से आपका बिहेवियर था, अब मैं किसको एक्सेप्ट करूं, ये वाले को एक्सेप्ट करूं या ये वाले को एक्सेप्ट करूं?
1: जब हम एक इंडिविजुअल को एक्सेप्ट करते हैं तो हम पूरे पैकेज को एक्सेप्ट करते हैं, तब हमें ये भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि चलते चलते इस यात्रा के दौरान उतार और चढ़ाव आ सकते हैं, परिस्थितियों के कारण, कोई और इंटरनल टर्मोइल के कारण, मे बी द अदर पर्सन इज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, इट कुड बी एनीथिंग, बट देन आई हैव एक्सेप्टेड एंड इंस्टेड ऑफ फीलिंग हर्ट, लेट्स से एक हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में एक ने दूसरे से झूठ बोला, इंस्टेड ऑफ फीलिंग हर्ट टॉक इट आउट की इसकी जरूरत क्यों पड़ी। यू नो नॉर्मली क्या होता है, आपने मुझसे झूठ बोला, आई एम सो हर्ट कि मैं विथड्रॉ कर जाती हूं,
0: मैं बात ही नहीं करूंगी,
1: यू नो मैं इतना हर्ट हूं, अब मैं अपने दुख में घुलती रहती हूँ, मुझसे झूठ बोला, ऐसा किया क्यों, एंड आई डोंट लाइक यू,
0: एंड यू नो व्हाट हैपेंस, अंदर तो ये दुख चलता रहेगा, ऊपर से आई क्रिएट अ फेस कि आई एम ओके, यू नो दैट्स अगेन अ मेजर कॉन्फ्लिक्ट, कि ये भी कि मैं अंदर से तो उतनी ही परेशानी, और ये परेशानी बढ़ती जाएगी, लेकिन ऊपर से आई क्रिएट अ फेस कि इट्स ओके
1: या बट द थिंग इज कि जैसे ही सी व्हाट हैपेंस इज हम हर्ट जब हो जाते हैं कि आई एम हर्ट राइट एंड नाउ आई डोंट लाइक यू बिकॉज यू हर्ट मी, सबसे ओल्ड बिलीफ सिस्टम कि यू हर्ट मी,
0: हमेशा कोई और मुझे छोड़ देता है।
1: पहले तो उस बिलीफ सिस्टम को जब हम चेंज कर देते हैं कि यू कैन नॉट हर्ट मी, आपने जो किया सो किया, मैं हर्ट हो गई उससे, क्योंकि मेरे अंदर ताकत नहीं थी उस बात को स्वीकार करने की, तो उससे क्या होगा, मेरी आपके प्रति नेगेटिव एनर्जी नहीं जाएगी। अभी तक नेगेटिव एनर्जी क्यों जा रही है, यू हर्ट मी, आपने मुझे धोखा दिया, नहीं, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई स्टेट ऑफ माइंड, आई एम हर्ट राइट नाउ, इट्स माई फॉल्ट, यू हैव डन व्हाट यू हैड टू डन, व्हाई एम आई हर्ट। तो पहले तो अपनी काउंसलिंग कि व्हाई एम आई हर्ट, वर्क ऑन माई सेल्फ, आई नीड टू बी स्टेबल, दूसरे ने कुछ किया बट व्हाई एम आई गेटिंग अफेक्टेड, तो पहले अपनी काउंसलिंग करके अपने आप को स्ट्रांग बना ले, फिर हमारे अंदर वो ताकत होगी दूसरे की हेल्प करने की, कि व्हाट इज द रीजन, व्हाट हैपेंड, बट आई एम एबल टू टॉक विद दैट कंपैशन ओनली व्हेन आई डोंट हेट यू, बट जब आप मेरे को झूठ बोलते हैं तो आई हेट यू एट दैट टाइम। तो हेट एंड कंपैशन, गुस्सा एंड लव,
0: इनफैक्ट कैनॉट कम टुगेदर, एंड मैंने आपको पहले ही कटघरे में रख के आप पे पूरा इल्जाम लगा के, आई ऑलरेडी एक्चुअली लाइक यू नो आई हैव मेड यू अ क्रिमिनल ऑलरेडी,
1: तो फिर आपको मेरे से कंपैशन नहीं मिल सकती है उस हालत में, क्यों, क्योंकि मैंने आपको जिम्मेवार ठहरा दिया मेरे दर्द के लिए। जब मैं आपको अपने दर्द से अलग कर पाती हूँ कि आप अलग है, मेरा दर्द मेरी सेल्फ क्रिएशन है, तो पहले सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, इट्स माई क्रिएशन सो आई हील इट, एंड जब मैं अपने आप को ठीक कर लेती हूँ, हील कर लेती हूँ, तब मेरे अंदर वो ताकत आ जाती है कि आपके अंदर जो चीज आपको डिस्टर्ब कर रही है, बिकॉज दैट्स अ रिलेशनशिप, रिलेशनशिप और क्या है, कि आप किसी उतार चढ़ाव से गुजर रहे हैं as your partner in life, I should be able to help you through that. लेकिन हम इतने अपने ही दर्द में इतने घुल जाते हैं और दूसरे पर इतना ब्लेम डाल देते हैं कि दूसरा किस दौर से गुजर रहा है
0: ये हम भूल ही जाते हैं कि हाँ दैट्स ट्रू और गलती करने का जो स्कोप हर एक की जिंदगी में होता है
1: गलती वो भी समझनी पड़ेगी इन द राइट पर्सपेक्टिव
0: गलती वो गलत है भी या नहीं
1: यस ये हमने उसको गलती माना तो पहले तो उसको भी तो डिस्कस करके वो पर्सपेक्टिव राइट लाना पड़ेगा लेकिन वो तभी हो जाता है व्हेन आई लव यू इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट यू हैव डन
0: दैट्स व्हाट वी से अनकंडीशनल लव द वे यू सेड कि द वे शिव बाबा
1: एन अनकंडीशनल लव इज वेरी इजी ओनली एंड ओनली इफ आई अंडरस्टैंड कि यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर माई स्टेट ऑफ माइंड अभी वो लव है लेकिन आपने कुछ ऐसा कर दिया जो मुझे दर्द आ गया मैंने ये सोचा आप मेरे दर्द का कारण है तो मेरे प्यार की जगह गुस्सा आ जाता है तो और गुस्सा जहां आया वहां प्यार नहीं है
0: बुद्ध प्यार और नफरत सिक्के के दो पहलू हैं कहा जाता है कि नफरत ही प्यार की पहली सीढ़ी होती है ये भी बहुत बातें कही जाती हैं
1: प्रेम मुझात्मा का ओरिजिनल स्वरूप है नफरत नहीं नफरत एक संस्कार है जो बन चुका है उसको तो हम हटा सकते हैं लेकिन आत्मा के जो ओरिजिनल गुण है उसमें प्रेम और नफरत दोनों नहीं है बिकॉज आई लाइक ओनली दैट लव सो लव इज माई ओरिजिनल नेचर एंड आई एम filled with it to be able to give it to everyone else.
0: So Shivani aaj trust ko ek naye andaaz mein dekhne ki koshish ki ab vishwas ek aisi cheez thi jo hum dusron par karte the lekin aaj ye baat phir saaf ho gayi ki main se hota hua hi har cheez jayegi to wo kar kyu rahi hu apne liye you know I become very important. Bahut bahut dhanyawad is puri baat cheez ke liye. Om shanti. कोई भी रिश्ता कहा जाता है कि उसकी नींव अगर मजबूत हो तो फिर वो इमारत या वो रिश्ता बहुत सुदृढ़ होता है पति पत्नी के इस रिश्ते में हमने देखा कि हर बार हम कहते थे कि नींव विश्वास की है लेकिन आज विश्वास डगमगा रहा है तो वो किसी और के कारण नहीं बल्कि हमारे अपने ही कारण ये बात अगर समझ में आ जाती है तो रिश्तों को एक नया रूप दिया जा सकता है और विश्वास को दोबारा कायम किया जा सकता है ये भी बात कि एक बार विश्वास टूट गया तो दोबारा नहीं हो सकता जब मेरे ही हाथ में है तो मैं विश्वास दोबारा कर सकती हूँ अगर आपके पास कोई सवाल है कोई बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं आपका स्वागत है आप हमें फोन पर या फिर ईमेल पर भी संपर्क कर सकते हैं हमारे फोन नंबर है 09999344555 09999344666 09873666555 और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में इन दिनों हम बात कर रहे हैं रिश्तों की रिश्ते जो हमारी जिंदगी में रस लाते हैं हमें जिंदगी जीने का नया अंदाज देते हैं और जिंदगी जीने के लिए बहुत जरूरी होते हैं दोबारा आपसे होगी मुलाकात और कुछ खास रिश्तों के साथ फिर जुड़ेंगे आपके साथ अब दीजिए इजाजत ओम शांति

0: थे नीचे थी आके पक्का भी हो गया। की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: बंसल इमीग्रेशन दा जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
0: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन सिल्वर आइटम्स पूजा आइटम्स सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
2: हां जी हां जी ओए हां जी हां जी
3: हां जी रेडियो
0: सुनो जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन सिल्वर आइटम्स पूजा आइटम्स सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
4: अज दा विचार अज दी कहानी हर रोज तुसी सुनदे हो शो हां जी मेलबर्न विच तुहाडी डिमांड उते। आओ एक बार फिर सुनदे हां इस हफ्ते दी एक बेहतरीन कहानी।
5: रेडियो हां जी 1674 एम दिस इज योर अपना आरजे पुनीत। समा हो चुका है अज दा विचार अज दी कहानी दा। कहानी कोई मोटिवेशनल या फिर इंस्पिरेशनल नहीं है लेकिन आस करते हैं कि पसंद जरूर आवेगी। अद्धी रात भांडे खड़कण की आवाज पानी की चलती टूटी मां रसोई विच सी। तिन्ने नूहां पुत कादे सौ गए सन पर वह जागती सी। खुरे विच खिलरे जूठे भांडे कम सांझे टब्बर दा सी पर वह खुद ही सारी जिम्मेवारी समझती सी। नालों नाल दुध का पतीला गर्म हो रहा सी। अजे जाग भी लाना बाकी सी ता जो सारे अगली सवेर ताज़ा दही खा सकन। अचानक कच का गिलास भुंजे जा डिगा सदा सज्जे पैर दे अंगूठे ते। पीड़ हुई पर वह खुश सी खड़ाक जू नहीं सी होया अते गिलास टुटनों भी बच गया पर फिर भी सुते पए जाग पए। वड्डे पुत्तर दे घरों घरवाली आखण लगी अद्धी रात हो गई इसनू नींदर नहीं पैंदी ना आप सौंदी ना किसी होर नू सौण दिंदी। विचले थां वाली बोली हुण वेखणा सवेरे तड़के 4 वजे फिर तो खड़कड़ शुरू हो जानी ना आप चैन लेना ना किसी होर नू चैन लैण देना। सब तो निक्की अपने घर वाले नू बोली प्लीज़ जाके आप पखंड बंद करवाओ अखे आथण वेले जूठे हुए अगली सवेर तक नहीं छड़ने चाहिए बदशगनी होंदी है। छोटा गया पर उदों तक मां सब भांडे सांभ चुकी सी दब्बे पैर ही वापस मुड़ाया। लक दा कुब चेहरे दियां झुलड़ियां ढिलकी हुई चमड़ी जोड़ां दा दर्द गोडियां दी तकलीफ अखां दा मोतिया सरफे दे दंद मुड़के दे नाल भिजिया शरीर पैरां दी लड़खराहट तां वी दुध दा गर्म पतीला नंगे हत्थां नाल ही चुक लिया। इन्नू वेख्या घड़ी दियां सूईयां वी बरोबर हो गईयां। अपने मंजे वल नू जाण लगी फिर वापस परत आई फ्रिज अंदरों भिंडियां कढ़ियां सारियां कट दित्तियां अते फिर गंढे अते अदरक वी। फिर कुछ चेता आया सराणे थल्लों पोटली कढ़ी अंदरों अंदाजे जहे नाल गोलियां कढ फक्का मार लिया ते नाल पानी दे नाल अंदर लंघा गई। खोल खंघदे हुए घर वाले ने पुछया आ गई है? आख्या तो सी अज ते रसोई विच कोई खास काम ही नहीं। मगरों पता नहीं नींदर पई के नहीं पर तड़के अलार्म बाद विच वज्या पर वह पहला ही जाग पई। पो माग दियां ठंडियां सवेरां नूं भी शायद ही कदे तत्ते पानी नाल नाती होवे आखे मैनू कड़ी ठंड लगती है पर हरेक नूं वखरा गर्म पानी करके दिंदी। आप अखबार कदी ना पढ़दी पर गेट लाग्यों चुकनी उसकी जिम्मेवारी सी। खुद सारी जिंदगी कदे चाह नहीं पीती पर बाकियां दे लई प्यालियां ढक के जरूर रखती। ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਲਿਖਣਾ, ਬੋਲਣਾ, ਸੁਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਸੌਟੀ ਤੇ ਪਰਖਣਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਜਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਖੁਦ ਹੀ ਇੱਕ ਕਸੌਟੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਦੂਜੀ ਕਸੌਟੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਰਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਗਮਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਲੰਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਗੀਤ ਲੰਮੇ ਨੇ, ਨਾ ਭੈੜੀ ਰਾਤ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਗੀਤ ਮੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਸੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣਦਿਆਂ ਰੋਣਾ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲਕੋਇਓ ਨਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਡੱਕਿਆ ਕਰੇ। ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਰੋ ਲੈਣਾ, ਭਾਰ ਹਲਕਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਸਿਰ ਵਜੂਦ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਰ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੱਫੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੁੰਮ ਲੈਣਾ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਵਾਨਗੀ ਪਾ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉੱਚੀ ਸਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਈ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਮਾਂ ਜੋ ਹੋਈ

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, ध्यान से इश्क कीजिए, क्योंकि शादी भी हो सकती है। सो दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना राजीव ठाकुर और आप सुनते रहिए रेडियो हाँ जी 1674 AM। हंसिए, मस्त रहिए, नाचते रहिए, खुश रहिए।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: Hi, this is Salman Khan and you're listening to Radio Hanji. Hi, this is Salman Khan and you're listening to Radio Hanji.

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
2: हेलो, मैं हूँ सनी देओल और आप सुन रहे हैं हांजी 1674 AM।

This is Ali Asghar here on Radio Haji 1674 AM. सुनते रहिए, सुनाते रहिए, बजाते रहिए, जो करना है करिए.

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: सत श्री अकाल टू ऑल द रेडियो हांजी लिसनर्स।